0: होते हैं।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सोट महला पंज वाह, गुर का शब्द रखवारे, चो की चो गिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लज्जाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करी मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाउ, नानक प्रभ अविनासी, ता की सेवन बिरथी जासी, आनंद कर है तेरे दासा, जा पूर्ण हुई आसा, बिलावल महला पांजे वा, ताती वा उनन लग गई, पार ब्रह्म शरण आई, जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जन बणत बनाई, राम नाम आओ खुद दी।

ਕੋ ਆਖੈ। ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋ ਹੈ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ। ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ। ਸਹਿਸ ਅਠਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ। ਪਵ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨਹੂ ਨਾ ਵੀਸਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤੇ ਆਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤੇ ਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਾਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖ ਹੈ ਸੇ ਭੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾ ਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਹੈ ਵਖਿਆਨ। ਆਖ ਹੈ ਬਰਮੇ ਆਖ ਹੈ ਇੰਦ ਆਖ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖ ਹੈ ਈਸਰ ਆਖ ਹੈ ਸਿੱਧ ਆਖ ਹੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖ ਹੈ ਦਾਨਵ ਆਖ ਹੈ ਦੇਵ ਆਖ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ।
सेई तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चेतना आवन, नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर जिनसी। माया जिन उपाई कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी। हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई मुंदा संतोख। सरम पात झोली ध्यान की करहै बिभूत, खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत, आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध। संयोग वियोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै पुरमान, ओहो वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान। आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार, कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बाव लख होहे लख हो वह लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीस। ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस, आखन जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर। जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुट्टै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम, अनेक अनंत करमी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान। नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड काए हो धर्म ज्ञान खंड काख हो, कर्म केते पवन पानी वै संतर। केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस। केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस, केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद। केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ता किया गला कथिया ना जाहे। जे को कहै पिछै पछुताए तथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तथै होर ना कोई होर, तथै जोध महाबाल सूर। तिन मह राम रहया भरपूर तथै सीतो सीता महिमा माहे। ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह ना ठागे जाहे। जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो। करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार।
कर कर वेखै नदर निहाल तुथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तुथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार भाओ खला अगन तापताओ भांडा भाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी ते नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहि जाय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गनिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वै सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाय नमस्तंग अजाय नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निरकर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरदूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग परपोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेसंग अदेसे नमस्तंग अपेसे नमस्तंग निरतामे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग किरतारंग नमो सर्व तंदे नमोस्त अबंदे
नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्बाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अपू हैं अलेख हैं अपेख हैं अनाम हैं अकाम हैं अतेय हैं अपेय हैं अजीत हैं अपीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजेय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अबरण हैं अपूत हैं अपरण हैं अगंज हैं अपंज हैं अचूज हैं अचंज हैं अमीक हैं रफीक हैं अतंध हैं अबंध हैं निर्बूज हैं असूज हैं अकाल हैं अजाल हैं अल्लाह हैं अजाह हैं अनंत हैं महंत हैं अलीक हैं निरसरीक हैं निर्लंब हैं असंभ हैं अगम हैं अजम हैं अपूत हैं अछूत हैं अलोक हैं अशोक हैं अकर्म हैं अपर्म हैं अजीत हैं अपीत हैं अबाह हैं अगाह हैं अमान हैं निदान हैं अनेक हैं फिर एक हैं पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंके स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देसे नमो सर्व पेसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं
नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्तर तत्तर विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चत्तर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचयो सोयं भाव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग आर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही बहुचित मद पार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अब अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा भार नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर परती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे
ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨਿਆ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸੱਤਰੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਭਰਮੰ, ਨਾ ਪਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਕਰਮੰ, ਨਾ ਕਾਏ, ਅਜਨਮੰ ਅਜਾਏ। ਨਾ ਚਿੱਤਰੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ, ਪਰੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਸੈ ਆਦਿਸੈ, ਅਦ੍ਰਿਸੈ, ਅਕ੍ਰਿਸੈ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ। ਕੇ ਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ, ਕੇ ਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ, ਕੇ ਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ, ਕੇ ਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ। ਕੇ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ, ਕੇ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ, ਕੇ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੈ, ਕੇ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ। ਕੇ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕੇ ਧਰਮੰ ਤੁਜਾ ਹੈ, ਕੇ ਆ ਸੋਕ ਬਰਨੈ, ਕੇ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ। ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਸਰੂਪੈ, ਕਿ ਅਨੁਭਉ ਅਨੁਪੈ। ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ, ਕਿ ਚਿਤਰੰ ਬੇਹੀਨੈ, ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ। ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾਕੈ, ਰਹੀਮੈ, ਰਿਹਾਕੈ, ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ, ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ। ਕਿ ਅਫਬੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ ਹੈ, ਕੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ। ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਹਾਂਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦਾਨਿਆ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗਾਉਣੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਉਣੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੀਨੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਲੀਨੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਹੋ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਹੋ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਲੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪਾਲੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਹੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗੰਤਾ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸੋਖੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪੋਖੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਤਰਾਣੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨਿਆ, ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਆ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਆ। ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ, ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ, ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ, ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ। ਕਿ ਹੁਸਨੁਲ ਵਜੂ ਹੈ, ਤਮਾਮੁਲ ਰਜੂ ਹੈ, ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ, ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੈ। ਬਿਲੰਦੁਲ ਮਕਾਨੈ, ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ, ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੈ, ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ, ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ, ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਭੰਗ ਹੈ। ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਬਿਭੂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ, ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਓਅੰ ਆਦ ਰੂਪੇ, ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪੈ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ, ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ, ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ, ਸੋ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਛਿਜ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕੰ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ, ਬਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਜੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨੰਗ ਹੈ, ਅਭੇਖ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭਰਮ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਹੈ, ਅਜੈ ਹੈ, ਅਭੈ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਧੂਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ, ਅਧੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਅਭਗਤ ਹੈ, ਬਿਰਕਤ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ,
निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्वय प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्वय प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज कर हिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहिस्तुल निवास है के सर्बुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद भार छंद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एकै सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है
पार ते पार हैं, करुणा कार हैं, अजपा जाप हैं, अथपा थाप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, धरणी तृत हैं, अमितेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता मृत हैं, नर नायक हैं, खल कायक हैं, विश्वंग पर हैं, करुणालय हैं, नृप नायक हैं, सर्व पायक हैं, भव भंजन हैं, अर गंजन हैं, रिप तापन है।

तंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरे छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पूजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सोतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पाव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दोकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाहि दसवीं त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गावन काउ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद नियावत शीस ना जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत काउ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखाय पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजारक देखाय श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखाय सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया

तू चाओ सज्जन मैडया देई सिस उतार नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार जे तू मित्र असाडड़ा एक पूरी ना वे छोड़ जियो महिंजा ताओ मोहिया कद पसी जानी तोहे सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म होए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देहे नाम कर अपने चेरे सो कहो टल गुर सेवी है अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला पंजवा वार सलोका नाल एक ओंकार सत गुर प्रसाद

सिमरंत संत सर्वतर रमनं नानक अगनासन जगदीशुर है। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमनं नानक अगनासन जगदीशुर है। पेखन सुनन सुनावनो

सत्संग जी अंतर्गत होके अपने दो तीन मिनट वास्ते नाम नु सुनना करना जीओ। जिन्ना गुरमुखा नु शब्द सुनदे आ उन्ना ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जीओ। जिन्ना गुरमुखा नु नाम नहीं सुनदा अंतर्गत होके सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जीओ। कृपा करके नेत्र बंद रखने जीओ।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगड़ाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे

पौड़ी साहिब होए दयाल, कृपा करे ता साई कार कराएसी, सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाएसी, हुकम मन्या होवे।

सारी संगत जी आओ रल मिल के सारी संगत गरीब निवाज कल की तर पातशाह जी दी बख्शी हुई गुरु फतेह बुलाओ सीस बख्शो प्यार सहित सारे माई भाई आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी दसां पातशाहियां दी जग दी जोत समरथ गुरु।

ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। यही फर्क है ना। पास हरे आयो कहो सुनियो अणसुनियो करे मानस जन्म उपदेश हृदय टेक है। तीजा बोल कहिंदे ने तुहानू भली प्रकार पता लग जाना है। पशुआ शब्दहीन जिह बाना बोल सकै,

तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। वड्डियां भागां वाले हो, गुरु साहब जी की पावन बारगा सज बैठे हो, सब दियां हाजरियां प्रवान, प्यार सहित सारी संगत आखोगे रोजाना की तरह सरबत दा सरबत दा सरबत दा नानक नाम तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम

सारी संगत प्यार सहित गुरु फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार ज्ञान दे सागर, ज्ञान दे सागर राजन महा

गज मीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर ब्रेख जोयो। तो महाराज कहिंदे ने मिल जगदीश, जगद ईश्वर नु मिलन वास्ते ये मनुखा देही दी दात प्राप्त होई है। हुण मिल मिल जगदीश, मिलन की बरिया, बरिया दा अर्थ है वारी आ गई है। किधरे आपां जांदे होईए वारी लगी होवे बड़ा ध्यान रखना पैंदा है, वारी तो बंदा सज्जे खब्बे हो जावे ते पिछली लाइन च फिर लगना पैंदा है। ये हुण वारी है, समा लंघ गया फिर जाना पैगा पिछे। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। लमेरे समय तो बाद ए देह संजरिया, तेरी देह साजी गई है, मनुखा जन्म मिलिया है, फिर एदे विच परमात्मा नू मिल सकदा है। ता कबीर साहब कहिंदे ने कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बार बार, ज्यों बन फल पाके भोई गिरह, बाहोर न लागे डार। इस करके कहिंदे खग मृग मीन पतंग चराचर अनेक जून अनेक बिखै परमे आयो, कत की माई बाप कत केरा। किन्निया तेरिया मावां ते किन्ने बाप बने, किन्ने बाप ते किन्ने मां बने। ये सिलसिला मुक्किया ना, कत की माई बाप कत केरा, किदू थावो हम आए, केड़े केड़े थावां तो पौंदियां भटकदियां फेरे देही दात मिली है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। जब लग जरा बुढ़ेपा, जब लग जरा रोग नहीं ग्रसिया, जिन्ना चर बुढ़ेपे का रोग नहीं है बंदगी कर सकता है। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज ले रे मन सारिंग पानी, अबना भजस अब हुण भजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाई। कुछ राहो में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ रोते में कट गई, मंजिल वाले मंजिल पे जा लगे, राह बदलने वाले राहों में कट गई, उम्र इयों लंघ गई। कत की माई बाप कत केरा, किदू थावो हम आए, अगण बिंब जल पीतर निपजे, काहे कम उपाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कही न जाने अवगण मेरे। हुण गिनती करदे ने किते रुख बिरख हम चीने, किते पशु उपाए। पशुआं दीआं किन्नीआं जूनां ने, किन्नीआं जूनां लंघ गईआं, रुखां दरख्तां दीआं किन्नीआं जूनां ने लंघ गए। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए। नागां दीआं किन्नीआं जिस किस्मां ने, कोई काला है कोई चिट्टा है कोई फनी आ रहा है कोई कोबरा है, किन्ना जूनां चो लंघदा आ। केते
नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए। पंछियां दियां किन्नियां फिर जो उन्हां ने फिर दे मिली है। तो महाराज कहिंदे ने भरमदिया भरमदिया ये मनुखा देही दी दात मिली है। हुण अगे होर दसदे ने सुन सुन पाए रसातल भूतल देव पुरी प्रत लौ बहुतायो। भाई साहब जी कहिंदे ने कई तरह के उपा जतन सुन सुन के अते उन्हां नूं कमाउण करके पतालपुरी धरत मंडल अते स्वर्ग लोक तक बहुत तरह जन्म धार धार के भटकदा रहा। उत्थों फिर मरना पै गया। इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बेताला। फिर जूना जोग हूं भोग दुखाद सुख दायक धर्म अधर्म सो कर्म कमायो। भाई साहब जी कहिंदे जोग साधना राही जोग साधना राही दुखा सुखा आदि भोग भोगदा है अते धर्म अधर्म दे अधीन होके चंगे मंदे कर्म कमाउंदा रहा बार बार भटकदा रहा। पर गरीब निवाज हार परयो शरणागत आए गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। मैं हार के थक के जिन्हू कहिंदे ने ठाकुर तुम सरनाई आया उतर गयो मेरे मन का संसार जब ते दर्शन पाया अन बोलत मेरी बिरथा जानी अपना नाम जपाया। चारे कुंडा पालक आए पया शरणाए नानक सच्चे पातशाह डुबदा लिया कढ़ाए। हुण इत्थे भाई साहब जी कहिंदे हार परयो शरणागत मैं हार के थक के भटकद्या भटकद्या गरीब निवाज तुहाडे चरणा की शरण विच मारगा विच आ गया हां। गुरु मुख देख हुण आप जी दे दीदार कीते ने गुरु सुख पायो। गुरु हुण मेरा गला सुख नाल भर आया है आनंद आ गया। इस शब्द बाणी विच भी आउंदा है जिस वेले भट्ट साहिबाना ने गुरु अमरदास महाराज दे दीदार कीते ता आप मुहारे बोल निकले। उन्हां दा बचन बड़ा प्यारा है गुरु मुख देख गुरु सुख पायो होती जो प्यास पियूस पवन की वंचित सिद्ध को बिद मिलायो। लमेरे समय तो इच्छा सी विधि बन गई है गुरु अमरदास महाराज तुहाडे दीदार कीते ने इन्ना सुख मिलिया है इन्ना खुश आनंद होया हुण गला भर आया है। बहुते सुख वेले भी गले चो आवाज नहीं आउंदी बहुते दुख वेले भी गले चो आवाज बंद हो जाती है गला भर आया है। गुरु मुख देख गुरु गग्गा बिलकुल मुकता है रारे नूं दुलैंकड़ ने गला भर आया गुरु सुख पायो होती जो प्यास पियूस पिवन की वंचित सिद्ध को भिद मिलायो। गरीब निवाज पूर्ण भौ मन ठहर बसो रस बासन स्यों जो दंग दिसतायो। आप जिया दे दीदार करदिया अंदर दा इन्ना टका बन गया है मन दसा ही तरफा वाले दौड़दा सी रसा कसा विच लपटाए मन सी हुण सहज विच आ गया है। रस बासन स्यों जो दंग दिसतायो। गरीब निवाज गोबिंदवाल श्री गोइंदवाल साहिब गोबिंदपुरी सम सचखंड गोबिंद दी पुरी वर्गा वाहिगुरु जी। सम दा अर्थ है बराबर जलन भट्ट दा नाम है जलन तीर तीर नाम है कंडा बेपास बेपास दा अर्थ है ब्यासा दरिया। जलन भट्ट साहिबान जी कहिंदे ने धन गुरु अमरदास महाराज जी तो साने सचखंड ब्यासा दरिया दे कंडे ते साज दिता तुहाडे दीदार होए ने हुण साडा आउणा ते जाणा
खत्म हो गया है। रहियो संत हो टोल, साध बहु तेरे डिठे, सन्यासी तपसिया मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरयो किन्होंनो परचो लायो, कहती है कहती सुनी रहत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदयो मिलाए पिखिया जीव तू रख देवर हो। हुण जिद्दां भी रखोगे गुरु अमरदास अपने चरणा विच रख लोगे, तिवें बेनती करनी है गरीब रिवाज जिवें भी रखो अपनी बारगाह विच रख लो, ज्यों भावै त्यों रख लै। हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगाड़ है दिन सरात, हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है, दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया, हर पैज रखाए। वड्डियां भागां वालियो एक घंटा तुसी बिलकुल चौंकड़ा मार के जिवें किवें बैठे रहे, तुहाडे विचों बहुते प्राणी गुरसिख ऐसे ने जिहड़े बिलकुल घंटा भर सज्जे खब्बे नहीं होए। तुहाडी साडी हाजरी सतगुरु जी प्रवान करन, भुल्लां दीआं माफ़ियां देण। दो मिनट दा समां बाकी बचिया है, मेरी आदत है मैं सूई तो उपर कदाचित नहीं जांदा, बिल्कुल टक ते फतेह बुला देईदी है, कदे ही भावें सौ चो एक वार जे हो जावे तां अगले दीवान विचों एक मिनट पहलां छड्डीदा है, क्योंकि उस्तत तां मुकनी नहीं है। जे मैं कहां दो चार पांच मिनट लेके गां उस्तत करदा रवां, ना ना आप मुक जाना है, उस्तत थोड़ी मुकदी है, जोगो जोगा टल है। आओ हुण एक मिनट ही रह गया जे प्यार विच आखो।

रंग प्रंग नेक न जपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपनाया पुजर सर्व कला पर।

मेरे मीत गुरदेवा मोको राम नाम प्रकाश गुरमत नाम रपा सकाई हर कीर्त हमरी रह रास रहा हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सदा हर प्यास हर नाम मिलै तस है मिल संगत गुण प्रकाश जिन हर हर हर सुना न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए तिरक जीवै तिरक जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत्संगत जित रस पाया मिल जन नानक नाम प्रकाश राग गूजरी महला पंजवा काहे रेम चितवै उदम जा आहार हर जियो भरिया सैल पत्र मैं जंतु पाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुरप्रसाद परपद पाया सूखे काष्ट हरिया रहा जन पिता लो सुद बनता कोई ना किसकी तरिया शेष रिजस बाए ठाकुर काहे मन पो करिया ऊड़ ऊड़ आवै सै कोसा तिस पाछे बचर छरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिद्धान ठाकुर करदल धरिया जन नानक बलबल सदबल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया

तेरी भगता तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत तेरे भगत सलाहां तो जी हर अनक अनेकता तेरी अनक रह।

तेरे अनेक पढ़ें बहुत सिमर साध जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगता से भगत भले

जिन तू नाही विसरिया, ना हो जति सदी नी पड़िया। मूर्ख मुदा जन्म पया, परनवत नान तिनकी सरना। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुक देहुरिया।

नमस्कार है ताई हमारा जमन का सब जगत बनायो देव दया तो जचन बुझायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिन आव सवारी शिवकन को सबगुण सुख दिया सतन कोपल मुंबद किया घट घट के अंतर की जानता भले भले की पी पहचानता चिंजी से कुंचर सूला सबर कृपा दिशकर फूला

भों जेते बंदन से सुवतारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सभी तेरे तंदरालम जानत बेद पेद अरयालम निरंका निर्भका निर्लंब आद अनिल अनाद सांब ताका मूड़ चारत भेदा जाको भीम न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत मां मूल कछ भेद न जानत मां देह को कै सदा शिव ननकार का चिंत न पेव आप अपनी बुद्धि जती बरनत भिन्न भिन्न तोह देती तुपना लखन जाय पसारा के बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनु स्वरूपा रंग पयो राव की पुपा अंड जेर सदकिनी उत्बज खान भव रच दिनी कौं भो राजा वह बैठा कौं सिमट पै शंकर इकैठा सीरी से

दुष्ट अरिटरे तत्काला कृपा दिष्ट तन जाय निहर हो ताके ता तनकम हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म शुभ हो दुष्ट सा स्वय सके न को एक बार जित में संवारा काल पाते ताई उबारा जिन नाम त्यारो कहा दात दुष्ट दो तेरा खड़क कीत मैं शरण तिहारी आप आदे लियो बारी सर्व ठोर मोहसाई दुष्ट दोगते लियो बचाई सवैया पाए गए जबते तुमरे

राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।

0: पौड़ी मां पैयान उद्यान नगर कर मान्या चूट समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर है देवान्या सिर लगा जम डांडा ता पछतान्या बिन पूरे गुरदेव फिर सतान्या बिन पूरे गुरदेव फिर सतान्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार।